0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: द ब्रोजी बिट्स डॉन मिलिंस एंटरटेनमेंट अ माफिनो कनेक्ट अ मम्मीज बॉय ट्रैक निकल जे

0: मार मैं पाचू
1: इटी विन्यो और रेडियो इटी विन्यो और रेडियो इटी विन्यो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचू
1: इटी विन्यो और रेडियो

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: हेलो क्लास
3: हेलो फ्लेक्सी
2: क्वान बे क्वान कराबेरा

0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो पियम चुन के रे वेर क्वारो
0: पियम चुन के रे वेर क्वारो
1: बीमार मैं पाचू
0: बीमार मैं पाचू
2: यू आर लंग यू बी डू टेल आ लोका कम पेने
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: ईटी विनो और रेडियो और रेडियो Piyum yekere wer kwaro
0: mar me pacho
1: itiyuno or radio